0: संत राम नाम निस्तरिया, उठत बैठत हर हर त्याइया, अन दिन सो किरत करिया रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए, कोड़ जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चेत लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कदर राखी, जी जंत सब पै पवित्रा, सतगुर की सच साखी। बिगन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख कर आया। बिगन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख कर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: जुग जुग अटल चावर तखत सिंघासन दे मालिक, धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु रूप प्यारी साध सिंह जीओ, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी का फरमान है, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीट, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीट, हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा कट्टे होमें रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्हां तुरे पया संजोग, धर जी अरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम त्याईया कारज आवे रास ते मावा कंसार। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत की है, दो सेवक परिवारों को खुशियां दे समय बख्शिश किए ने। सेवक परिवार सरदार अमरप्रीत सिंह जी कलेर, बीबी हरदीप कौर कलेर, तिना दा बेटा काका जसमीत सिंह जी कलेर। दूसरा सेवक परिवार सरदार इंद्रजीत सिंह जी, बीबी अविंदर कौर, तिना दी बेटी बची हरनूर कौर। गुरु साहिब जी की अपार कृपा रहमत सदका काका जसमीत सिंह कलेर अते बची हरनूर कौर दे आनंद कार्ज की मर्यादा संपूर्ण हुई है। सोदास आस्ट्रेलियन सिख एसोसीएशन वालों समुचे स्टाफ वालों दोवां परिवारों को बहुत बहुत बधाई दिंदे आ, अते गुरु साहिब जी के चरणों में अरदास बेनती करदे सच्चे पातशाह इस जोड़ी के सीस ते अपना मेरा प्रयाथ रखन, गुरसिखी जीवन नाम की दात बख्शिश करके निहाल करन। सरदार अमरप्रीत सिंह कलेर अते सरदार इंद्रजीत सिंह जी दोवां परिवारों वालों सारियां संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हां संगतां ने अपने समय चो समा कढ के परिवार दीआं खुशियां दे विच शामिल होए हो। सो सारियां संगतां दा दोवां परिवारां वालों बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता है। सो बेनती है गुरु साहिब की हजूरी विच बच्चे बच्ची दे माता पिता जी इत्थे शगन की जिहड़ी रस्म निभाउणगे, बाकी दी संगतां चरणां विच बेनती है लंगर हाल दे विच परिवार वालों बड़ा सोहना प्रबंध किया गया है, आप जी ने बाकी दी जो रस्म है लंगर हाल दे विच जाके निभाउण दी कृपालता करनी। एक जरूरी बेनती है कि दरबार हाल तो जान बाहर जाने लग्या कृपा करके किसी भी गुरमुख प्यारे ने आपस कोई गलबात नहीं करनी, क्योंकि जिहड़ी भी गलबात करनी है आप जी ने लंगर हाल में जाके करनी, कृपालता करनी। गुरु साहिब जी का महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश मान ने, गुरु महाराज सच्चे पातशाह हाजर नाजर ने। सो आप जी के चरणों में जरूरी बेनती है कृपा करके आप दरबार हाल के चुप का दन बख्शिश करके आप दरबार हाल तो बाहर जाने की कृपालता करनी जी। एक बार फिर तो आई हुई संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद, भुला चुकों की खिमा। परिवार वालों गुरु का लंगर भी तैयार है, सारिया संगतों ने बड़े सत्कार के नाल गुरु का लंगर छक के जाने की कृपालता करनी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: किसी ने हवाई हाथ क्या मारा इन्होंने भी चलाया है बेचारे ने जो
1: आप ही करो
0: पता नहीं मुझे दोस्त
2: हाँ चल बे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की

0: ओत पोत जन हर रस राते आठ पैर जन हर हर जपै
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपै
0: हर की भगत मुक्त भो कर।

अगन माहे होमत प्राण न्यौली कर्म करे वो वासन निमुख निमुख कर शरीर कटावे हर के नाम संसार काचना है मन कामना तीर्थ देह छूटे सोच करे दिन से हर रात इस देही को बहुत साधना करे जाल तो वे बहुत देह अनीत मन हर के नाम की मैं माऊच बहुत सियाण बजम का भाव व्यापे पेख अनेक अगन नहीं बुझे छूटस नाही उपयाल आवर करतूत सगली जम डाने

प्रतंत्या कोटी संग रचे जो छो अस्थिर कर्माने छोड़ जाए तिसका श्रम करे चंदन लेप उतारे धोए आंधकूप में पतित विकराल करतूत पशु की मानस जात बाहर भेख अंतर मल माया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर यगन बाहर तन स्वाहा जाके अंतर बसे प्रव्याप सुनंदा कैसे मार्ग पावे कहाँ बुजार तु बुझे डोरा कहाँ बिसन पद गावे गुंग कै पिंगल पर्वत पर पवन करतार गुरना में दीन बेनती करे संग सुहाय सुहा बिना चीत बलुआ के ग्रह भीतर बसे दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत बैर विरोध काम क्रोध मोहू जुगत बिहाने कई जन्म तू ठाकुर तुम पै अदास मात पिता हम बारक तेरे कोई न जाने तुमरा अंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी।

अष्टपदे दास वस्तु ले पाछे पावे एक भी ना दे दास भी हिर ले जिस ठाकुर से नाही चारा।

0: रूपाद
1: रचना पूजन अनुस्वाद
0: मिथ्या चरण पर विकार को तावे
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन पर उपकारा
1: मिथ्या वास हेत विकारा
0: बिन बूझे मिथ्या सब भये
1: सफल दिन हर हर नाम हे
0: बिरथि सागत की आरजा
1: साथ बिना के हो सूजा
0: बिरथा नाम बिना तन अंध
1: ओंकार ताके दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम धन धन ते जन जहे कट बस्यो हर नाम रहत अवर कछ अवर कुमावत जानन हार प्रभु प्रवीन अवर उपदेश है आपना करे जिसके अंतर से निरंकार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने आपे आप आप करतन वीरा पाप स्याणप सगल ते रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए सो सेवक जिस केर पा

ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान।

0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अपमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी उसते ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कच बुरा न पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी के जन समृद्ध वर्षी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एकु प्रयास,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी स्वाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी पार पुकार उमा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला,
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार।

0: नानकोपरस सगल निसता अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस
1: मन में प्रीत निरंदर
0: भरत रूप न पेखे नेत्र
1: साकी कैसा संहेत
0: कर्ण सुने काहूं की निंदा
1: सत्य जाने आपस को मंदा
0: गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे
1: मन की वासना मन ते डरे
0: इंद्रिय चित्त पंच दोख ते रहत
1: मन कोट में देखो ऐसा परस
0: ऐसनो सो जिसु परसो प्रसन्न
1: विषय की माया ते होए पिन
0: कर्म करत होवे नह कर्म काहूं फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल पद कीर्तन संग राचे
0: मान तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ बरे नाम जपावे
1: नानक को दर्शन परम गत पावे
0: भगवती भगवान भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्कर संग
0: मानते बिनसे सगला भर्म
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: सा संग पापा मल धोवे भगवंत की टहल करे नित नित हार के चरण हृदय बसावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम सार रस पीवे हार की कथा हृदय बसावे वेद प्राण स्मृत पूजे मूल चौवरणा को दे उपदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो जो जपे तिसकी गत होए
1: सत्संग पावे जन कोए
0: कार कृपा अंतरे और तारे
1: प्रेत मुग पाथर को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण मंगल
0: काहू जुगत पिते ना पाइये धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तस्नद्री आया सदा नेक्ट नेक्ट हार जान अपने दास को आप कृपा करे
1: दास को सब सो जी परे
0: सगल सांगया तुम।

तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा मान तैसा अभिमान जो वर्ता ऐसा ही जुगत पार ब्रह्म के सगले ठाओ आपे करन करा बन जोग असरे वापयन तरंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश

अनंत जन अंत ना पारावार नानक रचना प्रभु रचि भव दयंक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट पे तीर्थ वासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट नाम तन नाम ते आवे कई कोट पे अभिमानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट पर दर्प कोहिरे कई कोट माया श्रम माहे जित जित लाभ तित तित लगना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट ससियर सूर नक्षत्र सरल समग्री अपने सूत तारे कई कोट राजस्थान सातक कई कोट किए रतन समुद कई कोट किए चिर जीवे कई कोट जंग के पिसाच सबते नेरे सब ते दूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट किए तनवंत जय जय भाणा तय तय राखे कई कोट भये बैरागी कई कोट प्रभु को खुजंते कई कोट दर्शन प्रप्यास कई कोट मांगे सतसंग जिनको है आप सो प्रसन्न कई कोट खानी अर खंड कई कोट होए अवतार कई बार पसरे पासार कई कोट की ने बो पात ताका अंतरा जाने कोए कई कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत् के बेते कई कोट नाम रस पीवे कई कोट नाम गुण गावे।

0: आवे के दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सोय। अष्टपदी करन करावन करने जोग,
1: जो तिस पावे सोई होग।
0: किन में था प्यो था अपनहारा,
1: अंत ही किस पारा वारा।
0: हुक्मे धारिया धर रहावे,
1: हुक्मे अपजे हुक्म समावे।
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
1: हुक्मे अनेक रंग प्रकार।
0: कर कर देखे अपनी वडियाई,
1: मानक समरिया समाई।
0: प्रभावे मानक गत पावे,
1: प्रभावे ता पाथर तरावे।
0: प्रभावे बिन शास्त्र राखे,
1: प्रभावे ता हर गुण पाखे।
0: प्रभावे ता पते दे उधारे,
1: आप करे अपन विचारे।
0: तुहां श्रेया काय आप स्वामी,
1: खेले भिक्षे अंतर जामी।
0: जो पावे सो कार करावे,
1: मानक दृष्टि और न आवे।
0: कहो मानक ते क्या होए आवे,
1: जो तिस पावे सोई करावे।
0: इसके हाथ होए ता सब किछ ले,
1: जो तिस पावे सोई करे।
0: अण जानत बिख्या महरचे,
1: जे जानत अपन आप बचे।
0: भरमे भूला दे दिसतावे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे।
1: नानक तेजे नाम मिले,
0: किन में नीच कीट को राज।
1: पार ब्रह्म गरीब निवाज,
0: जाका दृष्ट कछु ना आवे।
1: सत्कार दे दिस प्रगटावे,
0: जाको अपनी करे बख्शीश।
1: काका लखा रखने जगदीश,
0: जीव पिंड सब तिसकी रास।
1: काका

0: कबू चिनीच मह बसे,
1: कबू सोग हरिद्रंग से,
0: कबू निंद चिंद व्यवहार,
1: कबू ओपकाश प्याल,
0: कबू बेता ब्रह्म विचार,
1: नानका मिला मनिहार,
0: कबू नृत करे वो पात,
1: कबू सोए रहे दिन रात,
0: कबू मां क्रोध विकराल,
1: कबू शक्ति हो दरबार,
0: कबू हुए बहे बड़ राजा,
1: कबू खारी नीच का साजा,
0: कबू आप कीर्त में आवे,
1: कबू बलाला ढाका आवे,
0: जो प्रभु राखे ते भी रहे,
1: गुर प्रसाद मान सच के,
0: कबू हुए पंडित करे बख्यान,
1: कबू मुंह तारी लावे ध्यान,
0: कबू तट तीर्थ स्नान,
1: कबू सिद्ध साधक हो ज्ञान,
0: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया,
1: अनक जन पर में परमिया,
0: नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे,
1: ज्यो प्रभावे जिवे नचावे,
0: जो तिस पावे सोई होए,
1: नानक दूजा अवर न कोए,
0: कबू सा संगत एहो पावे,
1: सुस्तांते भोर न आवे,
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास, मानता नाम रते करंग,
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग,
0: ज्यों जल में जलाय खटाना,
1: त्यों ज्योति संजोत समाना,
0: मिट गए गबन पाए विश्राम, नानक प्रभु के

0: इसका हुक्म बुझ सुख होए,
1: इसका नामर कंठ पर होए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक बिघन न लागे कोए,
0: उस्तत मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सेला सगले दियो,
0: नैनो पेग ठाकुर का रंग,
1: संग बिनचे सब रंग,
0: चरण चल्लो मार गोविंद,
1: मिटे पाप जपिए हरबिंद,
0: हर हर कर्म सर्वनहार कथा, बटभागी ते जन जग माहे,
1: सदा सदा हर के गुण गाए,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: चेतन वंत गनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जाने ते सुखी,
0: एको एक एक पछाने,
1: एकत कियो सो जी जाने,
0: नाम संग जिसका मन मान्या,
1: नानक तिने निरंजन जानिया,
0: गुर प्रसाद अपना आप सूजे,
1: जिसकी जाने तिसना बुझे,
0: सास संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग ते हर जन रहत,
0: आन दिन कीर्तन के बुल बख्यान, एक ऊपर जिस जन की आशा,
1: जिसकी कटिए जन की पासा,
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक तिसे न लागे दुख,
0: जिसको हर प्रभ मान चित आवे,
1: सो संत सेला नहीं डुलावे,
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे,
1: सो सेवक को किसते डरे,
0: जैसा सा तैसा दृष्टाया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोदस सोदस सोदस सिज्या,
1: गुर प्रसाद तसा बुझया,
0: जब देखो तब सब कुछ मूल, नै किस जन्मे नै किस मरे,
1: आपन चलते आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनक जुगत रच थाप
0: थाप, अवनासी नाही किस खंड,
1: तारन तारे ब्रह्मांड,
0: अलख अपे पुरख पर

0: कृपाल उनकी सेवा सोई लागे
1: कृपा करे बड़भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक दिन पुरख उत्तम कर मान
0: जो किस करे सो प्राप के रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: सह सुभाए होवे सो हुए
1: करने हार पछाने सोए
0: प्राप का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सा तैसा दिसराना
0: जिस ते उपजे तिस माए समाए
1: सुख निदान
0: पाप

0: दर्शन
1: अष्टपदी अविनाशी प्रमाण में राख
0: मन की दुबरी त्याग
1: इसते परे नाही किछ कोए
0: चल निरंतर को सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गभीर गहि सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निदान दयाल बचंद
1: साथ तेरे की चरणी पाओ
0: नानक के मंदे अंदाओ
1: मनसा पूर्ण शरणा जोग
0: जो कर पाया सोई योग
1: हरन भरन जा का नेत्र फूर
0: जिसका मंत्र न जाने होर
1: आनंद रूप मंगल सत जा के
0: चरु तव दुनिया करता के
1: राज में राज जोग मैं जोगी
0: तपे तपे संग्रस में पोगी
1: त्याहे त्याहे भगत है सुख पाया
0: नानक देशपुर का कि अंत न पाया
1: जाके लीला के मित नाहे
0: सगल देव हरे अब गए
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोई अपने सूत
1: स्वात ज्ञान ध्यान जिन दे
0: बिंदास नाम ते आवे से
1: ते गुण में जा को फरमाए
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेक करे करंग
1: नाना विद के नो विस्तार
0: प्रभु अविनाशी एक ओंकार
1: नाना चलत करे खिन माहे
0: पूरे अपूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर प्रणत बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: साब काट तिसके सब तिसके ठाओ
0: जब जब दीवे नानक हर नाओ
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आगा अस्पताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
0: नाम के चंद उदरे सुन सरवन
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नाने चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रधान
1: दूत सत सत जा की बाणी
0: सत पुरख सा मैं समाई
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब पले
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नाने गुरते पाए
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत तेन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निरत पूजे जे कोए
0: नाम जप तन की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी नित गत
1: जिसके सिरे सो करने हार
0: अवन बोध करत विचार
1: करते की मित ना जाने किया विस्मन विस्म भये विस्माद प्रभु के रंग राज जन रहे
0: गुरके वचन पदारथ ले
1: होए दाते दुखा टनहार
0: जाके संतरे संसार
1: जन का सेवक सो बड़ भागी
0: जन के

0: संत जनामिल करो विचार,
1: सिमर नाम यादार,
0: आवरे पाप समीत विसार,
1: जन कमर
0: हरण कारण सो प्राप्त सम्रत, देवतन संचो हो भगवंत, एक आस रखो मनवाहे, जिस तन को चार कुंटे उठता वे, जिस सुख को नित बाछे मीत।

0: राष्ट्रपति जब आकार कछ न दृष्टि
1: तब कहते होता
0: जब धारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध के संग कमाद
0: जब इसका वर्ण चहन न जाप
1: तब हरक सो किसे व्यापत
0: जब अपने आपा परम
1: मुह का सबत परम
0: आपन खेला वृति जा
1: माने करने हर न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंद मुकत को किसको गनी
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक स्वर कौन कौन अपार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए
1: सकत को कठाए
0: जब आपे आप अपनी जो तरे
1: कौन डर कम का डरे
0: आपन चलते आप करने हार ना
1: नानक ठाकर अगम अपार
0: अब नासे सुखे अपने आसन
1: जब जन्म रन को कहा बिना सुन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जमकी तराज कौन किसे होए
0: जब अवगत गोचर प्रावे का
1: चित्र गोपत की सूचक लेखा
0: नाथ निरंजन अगोचर अगा दे
1: कौन छुपन कौन बंधन बाधे
0: अपने आप आप ही चर जा
1: नानक आप रूप आप ही ऊपर जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पात होता
1: तो बिन मैल क्यों क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन कौन मान कौन अपमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: छल छिद्र लगत को की
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तो किसे पू कवन तरतावे
0: करण करावन करने हार
1: नाने करते का नाही समार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाए
1: कमन माए बा मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला पे प्रवीण
1: तबेद कतेव काम कौ चीन
0: जब अपने आप आप उतारी
1: तो सघन सघन काम बिचारे
0: अपने ऊंचे अपने आप नेरा
1: कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विषम रहे विस्माद
1: नानक अपनी गर्जा ने आप
0: जय अशाल्य शेद अभेद समाया
1: हुआ किसे व्यापत माया
0: आप उसको आपे आदेश
1: जय गुण का नाम परवेश
0: जय एक भगवंता
1: कौन चिंतित लागे चिंता
0: जय अपने आप आप पतियारा
1: कौन कथा कौन सुनने आरा
0: भाव व्यंत उसते उच्चा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो प्रपंच आकार
1: गुण में किन्नो विस्तार
0: पाप उनते पई कहावत
1: कौ नरक स्वर्ग जावत
0: काल जाल माया जंजाल
1: हुमे मुंह परम व्यापार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ये बखियान
0: आपन खेल आप कर देख है
1: खेल संकोचे तो नानक के
0: जय अवगत भगत है आप
1: जय पसरे प्रसार संत प्रताप
0: हूँ पाका आपे धनी
1: उनकी शोभा हूँ बनी
0: आपे कौतक करे अनंत चूज
1: आपे रस को घन निर्जोग
0: जिस पावे तिस आपन नाइला

0: सो अंतर सो बाहर अनंत धर्म माहे आकाश पियाल
1: सर्व लोक पूरन प्रतपाल
0: मानतिर पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पाणी बैसंतर माहे
1: चार कुंड जिसे समय
0: तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ
1: गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण स्मृत में देख
1: सच्चे सुर मित्र तन में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: हां पढ़ो न कबू बोले
0: सर्व कला कर खेल खेल
1: मोल न पाइए गुणिया मोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत
1: तारियो स्वामी उत्पोत
0: गुरु प्रसाद ब्रह्म का नास
1: नानक दिन में ये विश्वास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सुवचन
1: सर्व व्यापी राम संरचन
0: जिन जाता तिस की ये रहत
1: सच वचन सब सब कहत
0: जो जो होए सो ये सुख माने
1: कर्ण करमणि हार प्रभु जाने
0: अंतर बसे वार पियो ही
1: नानक दर्शन से मैं हुई
0: आप सत किया सब सत
1: सरी उत्पत
0: विस्भावित करे विस्तार

0: कहूं के ने कुछ करा।
1: आप पल्लागर तू त्यतनी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साच तारी सब साच
0: बहुत बहुत अपन संग्राच
1: आंके गात में तो कहीं ना जाए
0: दूसर होए तो सो जी पाए
1: इसका की ऐसा प्रमाण
0: गुर प्रसाद नान के जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मिलाए ले प्रभु सोए
1: वो तनवंत कुलवंत पतिवंत
0: जीवन मोक्ष जिस दे भगवंत
1: तान तान तान जने आया जाने अवन काए स्वभाव
0: जन के संचित आवे नाव
1: आप मुकत

तुम मात पिता हम बारक तुम्हारी कृपा कोई न जान तुम्हारा अंत उचे ते ऊचा सगल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग निभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां प्राचीन ते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्तर कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैद पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पित्र दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पादा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ श्री ननकाणा साहब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शिश करो जी हे नमाणियां दे माण सतगुरु ने ताणियां दे ताण सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी दी महान कृपा दे सदका आप दी पित्र हजूरी अंदर संध्या दे सुंदर दीवान सजे सजे होए दीवाना विच सोदारा राज साहिब दी पावन गुरबाणी दे जाप होए गुरमत विचारां आरती आरती दे कीर्तन शब्द कीर्तन गुरु के कवीशरां वल्लों कौम दा शाना मता इतिहास गायन कीता गया सतगुरु बाणी पढ़दिआं सुणदिआं विचारदिआं कीर्ती करदिआं बहुत सारियां गलतियां भुल्लां हो जांदियां अणजाण बच्चे समझ के माफ़ करना गां वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शिश करना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराइयां संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा अपने चरणी लाउणा सतगुरु जी बेअंत संगत आप दे चरण परसन दे लई आ रही है संगत दे कदम लेखे चलाउणे सेवावां पिटावां अपने चरणां च दर प्रवान करनियां लंगर दीआं रस्तां प्रवान करनियां बहुत सारे गुरमुखां वल्लों विशेष सेवावां निभाईआं जा रहीआं सच्चे पातशाह भावनावां पूरीआं करनियां टहलीए सेवादारां दे सिर ते मेहर भरे हथ रख के अपने दर घर दी सेवा पातशाह प्राप्त करदे रहिणा आप जी दे दर घर दे सेवक बीबी बलजीत कौर औलख दे जन्मदिन दी खुशी ते समूह परिवार वल्लों उन्हां दी तंदुरुस्ती वास्ते अरदास कीती जा रही है पातशाह परिवार दे अंग संग हो के सहायता करनी माता अमरजीत कौर जी दी तंदुरुस्ती वास्ते बिरधी परिवार वल्लों सतगुरु आप दे पित्र चरणां च अरदास है अरदास प्रवान करनी माता जी नूं तंदुरुस्ती दी दात पातशाह बख्शिश करके कृपार्थ करना होर गुरु के गुरमुखां वल्लों बेअंत अरदासां आईआं सच्चे पातशाह चढ़दी कला नाम दी दात बख्शिश करके कृतार्थ करना
ਨੇਜਰ ਤੇ ਸੋਨਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਦਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਖਸ਼ੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਦਾਰਾ ਵੈ ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਕੀ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अवकाश दुष्मंटर है अवकाश सिमरन नंदिन जग है अवकाश सिमरन दुख न संताप है सर्व निदान नानक रंग प्रभु सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु सिमरन बिन सह दूजा प्रभु सिमरन दर के मानी प्रभु

0: सम सरकत नाहे।
1: नानक गुरमुख नाम जगत बत
0: पाई, मनकामना धीरते छुटे,
1: गर्व मान दमन ते उठे,
0: सोच करे दिन सर रात,
1: मन की मैल ना तन ते जात,
0: देही को बो साध ना करे,
1: मन ते कबू ना बिगिया टरै,
0: जल तो वे बोदे अजीत,
1: सुध काय काची बीत,
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच,
1: नानक नाम दरे पतित बह मूच,
0: बहुत सियाणप जम को पौप्या पै,
1: अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापै,
0: अनेक अनेक अग्नि बुझै,
1: कोट पाद रगै नहीं सिजै,
0: छूटस नाही उपया,
1: मोह व्या पै माया जाल,
0: अवर करतूत सगली जम डाने,
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै,
0: हर का नाम जपत दुख जाए,
1: नानक बोलै सह सुभाए,
0: हर पदार्थ जे को मांगे,
1: साजना की सेवा लागै,
0: अपना दुख मिटावे,
1: हर हर नाम हृदय सदगावे,
0: एको अपनी शोभा लोरे,
1: सासंग यो में चोरै,
0: एको जन्म मरण ते डरै,
1: साजना की सरनी परै,
0: जन को प्रभु दर्स प्यासा,
1: नानक ताकै बल बल जासा,
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान,
1: सासंग जाका मिटा अपमान,
0: आपस को जो जाने नीचा,
1: सोगनी है सब ते ऊंचा,
0: जाका मन होए सगल गिरीना,
1: हर हर नाम तिन कड़ कड़ जीना,
0: मन अपने ते बुरा मिटाना,
1: देखा सगल सृष्टि साज

भूत साध के संग पढ़े सुज्ञान सांग सबूत निबेरा साध के संग एक ऊपर जतन नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध के संग सदा प्रभुल सांग अमृत पंचा सार के संग मनोहर बैन सांग अर्जित मन पावे सांग आनंद प्रभ सुप्रसन्न साधु के संग महापुनीत सार के संग नाभिगा पैर सांग जान परमानंद सार के संग तजे सब आप नानक साध प्रभु बने आई साध के संग सदा सुख पावे साधु के संग अजर सह साधु के संग मैं पूछा है साध के संग केवल पार ब्रह्म नानक साधु का कुर्बान सा संग साजन्मित कुटुंब निस्तार है जिसतंते सबको वर्षावे सार के संग शोभा सुरदेवा सा संग अमृत गुण गायन नानक साध का संग सफल जन्म दर्शन पेट तो निहाल सार के संग अर्थ प्रहर सा संग चौथर मेला सार के संग अमृता जावे नानक उदर सा संग रस है सा संग हर के गुण गाओ सा संग सर पर निस्तर है साधु का संकट कट पीटा सा संगत पई मारी नानक साध बैठे संजोग जीतस मैं देता ख्यान है साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा सदा व्यंत साध की शोभा मुझते

ब्रह्मज्ञानी को बलबल चाहिए नाम ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी का जन्म मनमाए ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी जरूर पाठा करो ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने नाम ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सजीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी गुरु।

सार्गिकाल संग संगेत सबता जाने आपस को मंदा मन की वासना मन ते डरे नानक कोट मदे को आसा प्रसाद विष्णु की माया दे हो पिन तिस वैष्णो का निर्मल तरण केवल भगत कीर्तन संग्राचा सब ऊपर होत कृपाल नानक वैष्णो ब्रह्मगत पावे सर्व त्याग दुष्ट का संग प्रभु जय सकल पार ब्रह्म इस वो अति कीमत उत्तम होवे सुख मैं जाने स्थूल नानक उस पंडित को सलाह देस और नाम जपे को नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म तिसका नाम सत राम दासन पाए तिन पाया सो दास दुर्गा परमान जीव पर

तैसा मत तैसी भी खाटी तैसा रंग तासा राजाना नानक पुर कही है जीवन मुक्त जित जित कर रहा कहता सा तिन्ना प्रभाव सोई बनोग लगे न जाए पाप ब्रह्म के रंग हर ब्रह्म करता बना।

Sugunavarti Sampaje. Bhagavad Bhagavad Gita Sabdoi. Sada Sada Anand Karjab. Iske Har Ka Bichar. Aapi Aap Aap Prabh Soi. Sabte Du Sabhu Kai Sang. Aapi Ek Aapi Anek. Nan Sadi Rai Asmai. Aapi Racha Sab Kai Saath. सब कुछ उसका करने हार अंतर अंतर एक सोई कौतुक रह रंग पार नान कीमत कह न जाए गुरु प्रसाद किन्ने बखियानी कूड़ मदे किन्ने फिर ले चीना असंदुर पार अनूप कड़कड़ सुनी सबन बखियानी

0: के दुखन चमते नहीं छुटाए,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मली,
0: संत के दुखन सुख आते ही न,
1: संत के हते को रखे ना कोई,
0: संत के दुखन तान पष्ट होए,
1: संत के पार कृपा जे करे,
0: नानक सत्संग निंद पीतर है,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग जो लवे,
1: संतन के दुखन सर्व जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिजोन किरमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को चले,
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच नीच आए,
1: संतो की गाथा उकनाए,
0: नानक संत पाए तो है पीगत पाए,
1: संत का निंदक मात ताए,
0: संत का निंदक टिक न पाए,
1: संत का निंदक मात त्यारा,
0: संत का दिखन निंदक
1: मुत्रमुसरा, संत का निंदक राय ते ही,
0: संत का निंदक दुखी आर देना,
1: संत के निंदक सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग,
1: संत की निंदा दोख में दोग,
0: नानक संत पाए तो है सुख पियो मोग,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किस का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डाल लागे,
0: संत के दुखी को सब त्याग के,
1: संत का दुखी महाकारी,
0: संत का दुखी महाभिकारी,
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत की दुख ना सुखते डरे,
1: संत के दुखी को ना ही ठाव,
0: नानक संत पाए तले मिलाए,
1: संत का दुखी अनबीते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पूछे,
1: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर ते थोता,
0: जो श्वास में ना मृत किलो था,
1: संत के दुखी की जड़ के छनाए,
0: अपन बीजा पे खाए,
1: संत के दुखी को अवर ना रखना,
0: नानक संत पाए तले बार,
1: संत का दुखी एवं बिललाए,
0: जो मचल में उन मछली तड़पड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पाव की तन नहीं त्रापे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो गौर किल के तमाय दोला,
1: संत का दुखी धर्म दे रहे,
0: संत का दुखी सदक में त्या कहते, कीर्तन
1: निंदका तोरी पया,
0: नानक ज्योतिष पावे सोई दिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप जाए,
0: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाई,
0: संत का दुखी न मर न जीवाई,
1: संत के दुखी की पूजे नासा,
0: संत का दुखी उठ चलन रासा,
1: संत के दुख न तिष्ठे कोई,
0: जैसा पाए तैस कह हुए,
1: भया कीर्तन मेटे कोई,
0: नानक जाना साचा सोई,
1: सब कर तिसके करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: करो दिन रात,
0: जिसे दिया उस आस गिरास,
1: सब कछ बढ़ते तिसका किया,
0: जैसा

त्याग किया जंजाल मुख उजल अर्थर कह सोए नानक ताकै सत बलिहारै हर साध को अपना जियो साधु पर जाइए कुरबान सत्संग हर कीर्तन गाइए हर गुण गाय अमृत रस जाखै सर्वजुग नानक ते पाया भूखे को देव दयादार पुरली के का लेना पाए निर्मल करनी नानक सोचन निर्मल प्रभजीत जाकर दय को सचित सतमुखत सचवत सचा पास।

राष्ट्रपति पापं तव गते उत तदैवरोग संकुमात तवरोगशोरको कुशव्यापत तमोका केशोत्परम नान करने हर न दूजा तबंद मोत को किस को गनी तब नक्षु को कौन अवतार तब श्री सुगत को किताए तब कौन निडर कौन कटर नानक ठाकर कम पार तै जनमन को का विनाशन तब जमकी त्रास को कुछ सोए तब चित्रगुप्त किस भूष लेखा तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे नानक अपन रूप आप ही प्रजा तै बिन मैल को क्या तोता तै कौन को मान कौन अपमान तै चल चित्र लगत को किस तै किसे वो कौन तिपता वै नानक करते का नाय समार तब कौन माय बाप मित्र सुत पाई तै वेद कदे का कोचीन तो सगन सगन का विचार है तै कौन डॉ कर कौन कही है चेरा नानक अपनी का जान आप वह किसा व्यापत माया त्रिगुण का ना ही प्रवेश तै कौन चिंत किस लाग है चिंता तै कौन कदै कौन सुनने आ रहा नानक आपस को आप पूछा त्रिगुण में किन्नो विस्तार को नर को सुर पुंजावत मैं मोह परम पार अनेक प्रकार की अभिख्यान खेल संकोचे तो नानक एक जप सब आसा संत प्रताप उनकी शोभा बनी आप रस संकोचन निर्जोग जिस पावे

जो तेज ध्यात करे हर के गुण गाए करना हर नानक कुक जानिया जिसकी आस न वृत्ति जाए हुक्म बूझ ब्रह्म पद पाई जाके मन बसया निरंकार अंजन पूजा गुरु के पैर नाम कर प्रभा पे मिले गुण गावो प्रभु परमानंद दुर्लभ दे को करो उदार प्राण धर्म का सुहाओ मिट ज्ञान बिन से अंधेरा मन च नानक पल पाओ राम नाम मंत्र उतार जिस मन वसै तिस साच प्रीखिया दूत अर मन ते पहुंचाए दुर्गा निवह के तुम्हारी ना गौर ना वह जाए वैरा कनार ते आए रव कृपा ते प्राणी छुटे नाम जपत मन हो सुख तिस जन को कोई न बोचन हार नानक ताके कारज पूरा दर्शन से कदु दुष्ट सफल दर्शन सुंदर रूप अंतर्यामी प्रकुरदान ताके

मुक्ति जन सो जी पाए। कट कट ब्या प्रया भगवंत सब लोग पूर्ण प्रतपाल, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, चार गुण तद से समाए। मुर प्रसाद नानक सुख पाओ, सुशी सुन त्रम्या एक, आप डोलना कबू डोला, मोल ना पाई अकने

Sanchanas. सर्वचन साधु सब कहत कर्म क्रम हाथ प्रजाने नानक दर्शन देख सब हुई तिस प्रवक्त सली उत्पत तिस पावत एक अंकार जिस पावत इस लय मिलाए आपे आप पाप भरपूर नानक तिचना पुजाए सर्व नैना पे खनहारा आपन जसा भी सुना आज्ञाकारी की नी माया जो कुछ कहना सो आपे कह नानक जा पावे तले समाए उरे को कने कुछ करा आपे जाने अपने जी की ओतपोत अपन संग्राच दूसर होता सो जी पाए गुरु प्रसाद नानक के जान आप मिलाए लाए प्रभ सोए जीवन मुक्त जिस सदा भगवंत जिस प्रसाद सो जगत तराया जन के संचिता।

संत जनों की दूर मन मंग सासंग अगन सागर करो मानो गुरपुरे नमस्कार सासंग पज परमानंद गुण गोविंद मस्त पीवो एक रूप जाके रंग अनेक

0: दिसे मात लोक तुस जय दूर फिर वन सतगुर का डूर फिर प्यो दादे जे व्यो पुत्र प्रवाण
1: जिन बास्क नेत्रे गत्या करने ही।

गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु।

आत्मातन जात जाकर जन्म मरण बहीन लोक चौदह के बिके जग जाप ही जे जाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार कालहीन कला सुजुगत काल पुरख देश अंगराग न रंग जाके जात पातना नाम आप रूप मीक नुस्तत एक पुरख दूत अंगहीन पंगनातम एक पुरख पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेक्त परम वेद।

0: चक्र ताले
1: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
0: चतर चक्र माने चतर चक्र ताले
1: चाचरी छंद ना सतरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै
0: ना कर्मंग ना काये अजन्मंग जाये
1: ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै
0: अतिसे अतिसे भगवती छंद प्रसाद कथते के आछे जदेसे के आपे जपेसे के आपे जलोकै के आदित्य सोकै के राजन प्रभा है के तरमंग तुजा है के जब तंग कितरी है के छत्रन छत्री है।

स्वरूप है, अचित है, अछूत है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, निरुक्त सदा है, विभुक्त।

0: अनित है सुनित है अजात है अजाद है
1: सर्वं घंता सर्वं दंता सर्वं ज्ञाता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता सावल चंद प्रसाद नमो नरक नाशेष दैवं।

0: अमृत खोजते सो अमृत गुरते पाया,
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया,
0: जान सब तो दो पाए एक वेख परसने आया,
1: लब लो बंकार चुका सतगुरु।

0: मन वसया जंतरो लिखे आया
1: एक फिर एक नेरे करे गला गली किने ना पाया
0: नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया
1: पवित होए सेजना जिनी हर त्याया
0: पवित होए गुरमुख जिनी त्याया
1: पवित माता पिता कुटुंब सहित

सुहागण अवगुण बंती दूरे, जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहया पर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण रान न मैल विसे, नानक मैं वर साचा पावे जो

जिसके अंदर वसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तू भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जान है अपना की आप है मान है आप करत निवेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा।

जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभुता कह। जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे। जय प्रसाद आभूखन बैरी जय मान तिस सिमरत गवार सुखी। जय जय प्रसाद अश्व हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभु अपने मना। जे तेरी मनवंत बनाई उठत बैठत सत से त्याई। जिसे त्याय जो एक अलख है यहाँ उहा नानक तेरी रख। जय प्रसाद करहे पुन बोदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार विहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरहो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पात्रा है गुर प्रसाद नानक जस का है। जय प्रसाद सुनहे करन नाद जय प्रसाद वेखे विस्वाद। जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे वसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गद पावै जय प्रसाद सुख सह स्वभावै ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक बन जाग हो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूला मनो विसार।

0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरियास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार हो महा ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के सफल ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अमृत आगत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी के होया चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श उठभागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मैं शरणानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सल मनमाहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदादेश ब्रह्म ज्ञानी का कथन जात अखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान है ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जीव जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण प्रभु विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का स्वरूप प्रभात ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उधारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानको प्र सगल निस्तार अष्टपति मिथा नायन स्ना पर स्मरण प्रीत निरंजन दर्श प्रतिरूप न पेखे नेत्र सादगी डल ससंग हेत करना सुने काउ की निंदा शब्द जान अबस्को मंदा गुरु प्रसाद मुखिया पर हरे मन की वासना मन ते डरे इंद्री जीत मन दो तरह नानकोण मदे को सा परस वैष्णो सो जे सुपुर सुपसन विष्ण की मायत होय भिन्न कर्म करत होय न कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संगराचे मंदरंतन स्मरण गोपाल सब पर होत कृपाल आप दृढ़ वरे नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत का रंग सगलते आगे दुष्ट का संग मनते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार भ्रम सा संग बाबा मुल्क होवे दिस भगवती की मुक्त उत्तम होवे भगवंत की डाल करे नित मंत्र अर्पय भीषण प्री धर के चन हृदय बिसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सोपंड जमन प्रबोधे राम नाम आत्मय सोदय राम नाम सारस पीवे पंडित के उपदेश जगजीव हर की कथा हृदय बिसावे सोपंड फिर जो न आवे वेद वरान स्मृत पूजे मूल सुख में जाने स्थूल चवरणा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मन सर्व को ज्ञान चवरणा में जपे को नाम जो जपे तिसकी गत होय सासंग पावे जन कोय कर कृपांतरोधारे पस्प्रेत मुगत पात्र को तारे सर्वरोग का खद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम कहु जुगत के देना पाए धर्म नानक मिले जिस लिखिया धुर करम जिसके मन पावरम का निवास तिसका नाम सत राम दास आतम राम कृष्ण द्रियाया दास धनंद भाय तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर के प्रमाण अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सकल संगा तम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम मितावे जीवन मुख शोक आवे तैसा रक्त सा शोक सदानंते नाई वियोग तैसा सुमन तैसी स्माटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मानते सा अभिमानते सरंग तैसा राजान जो वर्ताय साय जुगत नानको प्र कहिए जीवन मुगत पार ब्रह्म के सगले ठाव जिस जिन घर आखे तैसा तनाव आप एक करा मन जोग प्रभावे सोई फन होग पसरे हो आप न तरंग लखे न जाय पार ब्रह्म के रंग जैसी मत तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जनंतना पारावार नानक रचना प्रभरचि बहुधन प्रकार अष्टपदी कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट वे तीर्थवासी कई कोट मन भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कव का विचारे कई कोट नवतर नाम ध्यावे नान करते कांत ना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगम आत्म निकोर कई कोट पर द्रुव को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम आए कई कोट पर देश भ्रमाए जिस दावत लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सजाती जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बिरख निभ जाए कई कोट पवन पाणी बैसंद्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट सशेर शून्य क्षेत्र कई कोट देवदान इंद्र सर क्षेत्र सल समग्री अपने सुधारे नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद पुराण समर शास्त्र ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸੰਬੰਧ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮਹਿਰ ਸਰਵਣ ਥੀਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਿੰਗ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਗਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਮੂਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕਾ ਪਲਿਪ ਦਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੋ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਲੇ ਥਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਾਈ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਕਤਨ ਨਿਵਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਵਨ ਲਾਨ ਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਵਨ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਦਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀ